आज ये गोते दैट ओन खुदसा दिन खुदों निशा ने नत ओसे दिन अनो न जाय बिनिना ना सा व खा को ना गे अखान त हन नी तो दा ले पान त इलिन त टेन दे खिदी के एया ये को एया खुदसा बे थनी गो खुद आ पा ना हन ने एस्तो को 8% एया बे त होना न जा आशो एया या होना जा दे कत ए से बिटिंग दैट ए होत आ थ्रो स्ट्रेट आ सा सा अनि पा हे लो एया ना न जा तो आदों त ये को बचीलो ए इन्फ्लेशन कि त होतो नी कि एता चनो पा त हो चलने तो ए यत आ क्वे ते यत न गे न सम ब खा गो तो ए ज को शेन को ता ए या हो जे श तो Kentucky the governor and then get a yanton gay Mitch McConnell was yen gay Republican J at there one day Hanata not so H Bahani Lago no a ya ado Dutch or Hunt a Holland ego a yan his has aunt is between in a hot it has angi adentic in a Trat the more yet than Adjut Adonetto Nets Ando Tahotit in ho a ya hold just a ya hot or need let's say between the auntie shin for Nahati Mitch McConnell. As ill in the Eya Hachia Hoto, June 14th, yet down the way Washington, deep in Nina, Eya, the Archer, Hunter has any Yego that

ए वेतत ओदे बिकेते स्तिज के ए यदि आज पाहो ए आज पते लतन नी को खुदाओ ए यहालेत आओ ए टेक्निक टेक्निक हाइला इन ला ए या होते नो शी ये को ए या आज न होते खित नगे आए Utah Valley University for Yede, the hot in the so let you hahozo the provo the a co a campus equation Gerande Kirkwood and any other Tigo. Defense lawyer Michael Burt, a no a d hot on FBI, but now it's hot nini at in a yit law conclusion a yi lage a you should not kin lini la a you doing schlant and legal experts that are no prosecutor than linege